देवते ने हरनाक्ष की कारवा लिखा दोनों नारद मुनि दे हवाले कर देता है। क्या दोनों नाल लेके नारद मुनि अपने आश्रम आ गए। आश्रम भी ओ जिते हर वक्त

अपना दुख भुल गई, सारा समा परमेश्वर का नाम जप के बतान लगी। ये जो नाम जपदी है, परमेश्वर दिया कथा कहानियां सुन दी है, ओदा असर एदे गर्भ विच है, पोस्ते हो रहे है। क्योंकि कहंदे ने जो मां खावे ओदा असर बच्चे ते हुंदा है, ते जैसी मां दी बिरती होवे जहो जिहा सुने ओहो जिहा असर होण वाले बच्चे ते हुंदा है। हुण ए नाम जपदी है, नाम सुनदी है, उस नाम दा असर

चढ़ाई की थी, वर मिले सन, देवते इहदा मुकाबला ना कर सके। देवत्यां दा बहुत बुरी तरह हरनाकश ने नाश कीता। इंद्र देवता अपनी नगरी छड़ के पहाड़ां वल भज गए। हरनाकश की जित होई। हुण हरनाकश ने वापस अपनी राजधानी आके ए ऐलान करा दिता, आज तो बाद किसी ने परमेश्वर का नाम नहीं जपना। जिन्हें भी नाम जपना है, हरनाकश का नाम जपना है। यह ही कहना है, जले हरनाकश, थले हरनाकश, हैप्पी हरनाकश, होसी भी हरनाकश, पानी उच भी हरनाकश, धरती ते भी हरनाकश, हैगा भी हरनाकश, ते रवेगा भी हरनाकश। ए अपना नाम जपान लग पे आ, मंदर बंद करा दिते। जेड़ा इहदा नाम नहीं जपदा, उस नूं या ते कतल कर दिता जांदा है, या सख्त सजा दिती जांदी है। लोग डरदे ने, राजा है सजा दिंदा है। बहुते लोग डर के इहदा नाम जपन लग पे, ते बहुते लोग जेलां विच बंद पए ने, जिन्हां दा भरोसा रब ते पक्का है। पर अक्सर भरोसा पक्का ना होवे, इंसान जुल्म अगे कई वारी झुक जांदा है। बहुते लोग डर के इहदा नाम

विष्णु भगवान नु ए भगवान हर नाकिश बड़ा जुलम कर रहे है, मंदिर बंद करा देते, अपना नाम जपा रहे है, दुनिया बड़ी दुखी है, असी भी दुखी है। ता भगवान ने कहा तुसी घबराओ ना, जदू को जुलम कर दे एक वरी ओ अत जरूर चुकदा है, पर हर जुलम दा अंत है, कदी बुरा समा हमेशा रहिंदा नहीं। हर नाकश दा अंत होवेगा, सारिया ने कहा भगवान इस तरह अंत होवेगा। ता भगवान ने कहा सुनो,

पैदा होया है वो मेरा भगत है। प्रहलाद ने अपने पिता का नाम जपना नहीं, एक घर विच लड़ाई शुरू हो जानी ते हौली हौली ऐसे घर की लड़ाई ने हरनाक्ष का नाश करा देना है ते दुनिया नू हरनाक्ष के मरण दे नाल ही

आकश दैत दे कलर कवल भगत प्रहलाद कलर धरती विच गुलाब दा फुल मुग पवे ते बड़ी हैरानगी वाली गल होंदी है। इसे तरह हरनाकश वर्गे दैत दे कार एक भगत दा पैदा होना हैरानगी वाली गल सी।

पानी विच डोब के मार दियो। छपाइया ने प्रहलाद नू पड़िया, हाथ पैर बन के उच्ची पहाड़ी ते लै गए। बड़ी डूंगी नदी जिन्हू देख के भी डर लगदा सी, छोटे जे बच्चे प्रहलाद नू चुक के नदी विच सुट दिता।

कि मेरा लड़का प्रहलाद डुबया नहीं। समझ ना आई हाले भी कि जिदी रखिया परमेश्वर करे उन्हू कौन मार सकता है। पर फिर प्रहलाद नु बुला लिया ते गुस्से नाल कहा, तू राम नाम जपना बंद कर, मेरा नाम जप, नहीं ते अग विच साड़ के मार देंगा।

गोदी विच लै के बह जावांगी। मैनू वर है मैं ते सड़ना नहीं, पर लाल सड़ जावेगा। इसे तरह कीता गया, लकड़ां दा ढेर इकट्ठा कीता, लकड़ां दे ढेर

ने कुछ तमाशा देखने वाले, कुछ लोग रब का न्याय देखने वाले कि देखो रब भगतां दी पैज रखदा है कि नहीं। कुछ अरदासां पै करदे ने, ऐ भगवान प्रहलाद दी रखिया कर, इन्हां दुष्टां नूं ए दस के हमेशा भगवान धर्मियां दी रखिया कर।

तेरी रखिया करन वाला मेरा की बिगाड़ लैंदा है ते तेनू किवें बचांदा है। एक थम तत्ता कीता गया हरनाकश ने कहा जे तेनू अपने रब ते भरोसा है इस तत्ते थम जफी मार जेड़ा अग दी तरह सड़दा पिया ते नाले हरनाकश ने तलवार खिंच ली।

आज डोल गया। तत्ता थम देख के ते भगवान ने कीड़ी दा रूप धार के थम ते तुरना शुरू कर दिता। पर बाणी कहंदी कि प्रहलाद डोलिया नहीं, क्योंकि भगत कदी डोलते नहीं।

ना मेरे हाथ विच कोई हथियार है, जद सारे वर परमेश्वर ने गनाए ते नाले किया देख ले, ना मैं औरत हां ना आदमी, सारे वर पूरे, अद्धा शरीर आदमी दा है, अद्धा शरीर शेर दा है। जदू हरनागश ने किया, हां भगवान जिन्ने वार मैं मंगे सन सारे पूरे ने, परमेश्वर बड़ा बेअंत है, गुरु हमेशा चेले कोलो एक गुण वध रखदा है, की पता है चेला कदू हंकार विच आके ते मुकाबले ते बह जावे, ते जेड़ा चेला मुकाबले ते बैठे वो चेला हो भी नहीं सकदा, ते ऐसियां दा नाश

भगत कबीर सब नाल भी होया है। हिंदुस्तान दा बादशाह सिकंदर लोधी उसनु पता लगा कि कबीर मुसलमान है, पर मुसलमान हो के ए राम राम करता है। कुछ लोका ने कान भरे

गंगा ते डुबण वास्ते लै गए, पर मैं बड़ा हैरान होया इन्हां लोकां दी अकल ते। एक पास कहंदे ने गंगा मां है पापां दा नाश करदी, ते उसे गंगा मां विच ए मैनूं

ते मन भी ओदा मजबूत है जेड़ा नाम नाल जुड़े है जेड़ा गुरु नाल जुड़े है। हाथ पैर ते बजे सन एक वड़ा सारा पत्थर कबीर साहब दे पेट नाल बन के इन्हां सिपाहियां कबीर

जिथे कोई नहीं रखिया करन वाला उथे ओ परमेश्वर आप रखिया करदा है। इस करके आओ ओदा नाम जपो। कबीर साहब नू भी सिकंदर लोधी ने अग विच साड़न दा हुक्म दिता पर कबीर साहब सड़े नहीं। हाथी अगे कबीर साहब नू सुटिया ता परमेश्वर ने उथे भी रखिया कीती। आखिर हार के सिकंदर लोधी बादशाह नू हिंदुस्तान दा बादशाह जिदे अगे हिंदुस्तान दे लोग झुकदे ने डर के ए बादशाह है। उस बादशाह नू हाथ जोड़ के कबीर साहब दे चरणा दे मत्था टेकना पिया। उपदेश कीता है ऐ भाई उस परमेश्वर ते भरोसा रखो जेड़े अधर्मी ने एक वरी ते जुलम करदे ने पर समय नाल अधर्मियां दा नास हो जांदा है ते धर्मियां दी हमेशा परमेश्वर जित करांदा है। आओ भाई आपां इस परमेश्वर दा नाम जपिए ओदा सिमरन करिए ताकि आए हुए कष्ट दूर होन सुखां दी प्राप्ति होवे। आओ सारे उस परमेश्वर दा नाम जपिए नाम ना छड़िए जे नाम छड़िया ते दुखी रवांगे जे नाम जपांगे ते भगतां दी तरह सुखां दी प्राप्ति होवे।

अगले वीरवार महाराज जी सेवा लैन। एक बारी सारे माई भाई ये पंक्ति रल के पढ़िए, कोई रसना भी वांझी ना रहे जी।

ठहरा नहीं। नाम तो बिना कोई बाण नहीं फड़न वाला, नाम तो बिना कोई वस्तु नाद नहीं जान वाली। इसलिए है कलगियां वाले पातशाह, हे दुष्ट दमन दाता, हे महान तपस्वी, हे मुकुंड दे निवासी सतगुरु, सानू जोड़ लै नाम दे नाल, सास ग्रास तेरा सिमरन करके, श्वास सफले करके, मुख उजला करके तेरे चरणा विच जाई। जो गुरु के लाल श्री हेमकुंड साहब श्रद्धा और भावना दे नाल नाम जपदियां सेवा सिमरन परपकार करदियां जांदे हन, इस रस दा इस स्वाद दा उन्हां नूं ही पता है। निरंकार आप ही अपनी शक्ति बख्श के ऐसे कठिन रस्ते तो आप सहायता करके ले जांदा, औखी घाटी बिखड़ा पेंडा मेरे अंग संग होए सहायगी। जो सिमरन करदियां उथे पहुंचदे हन भाई, उन्हां दे चेहरियां दे रंग भी तब्दील होंदे हन। कोई नाम दा नूर चढ़िया हुंदा, नाम दी लाली हुंदी है उन्हां दे मस्तक। ते फिर जी करदा है कि होर जपां, जप जप के समा बितावां। इसलिए ए अरदास करदे हन।

गिद्दड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल एक एक सिंह ने

लड़न दी समर्था रखन लग पे। ए गुरु जी ने मौजजा दिखाया, करिश्मा दिखाया कि खंडे बाटे दी पहल दे के ऐसी रूह फूक दिती कि मौत दा कोई डर नहीं, किसे जरवाने दा कोई डर।

सिर तां कटवा दिता, पर उसका हाथ फड़िया सी जेड़ा, वो मुड़ के किसे भी हिंदू दे मत्थे तो तिलक ना पहुंच सकिया। ताई फिर दसवें पातशाह ने अपनी बाणी विच भी आख्या सी ना,

पवित्र खून ओ पवित्र केसर मथे ते लगा दिता जिसनू कोई मुड़के पूंज नहीं सकया। एक कुर्बानी है।

कृधे तत् कत्ता दी गेन धा गणनक त्रिकृधे ता तक त्रिकृधे ता घी गेन धा दी धा गणनक त्रिकृधे ता तक त्रिकृधे ता घी गेन धा दी धा गणनक त्रिकृधे ता तक त्रिकृधे ता घी घिन दा।

गुरनाम सिंह जी शब्द दी पहली तुक है अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी अते दूजा शब्द जिसनु गायन कर रहे हैं प्रोफेसर हरचंद सिंह जी शब्द दी पहली तुक है तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधक तू मेरा प्राता पहला शब्द पेश कर रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी।

बिना शस्त्र के संग नर भेड़ जानो, बिना शस्त्र के संग नर भेड़ जानो। गुरु गोबिंद सिंह का मुखवाक है, बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा है? शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की। 4,000 ते आया इधरों फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया। ते जिहड़े सी ना उन्हां दे खिलारे होए बंदूकां लैके वह भज गए, जिहड़े दुष्टां दी फौज सी वह भज गई। ते दो चार साडे सिख विचारे लागे कोतवाली, उन्हां नूं पिस्तौल ते उन्हां रात ही खोले सी ते डंडे इन्हें हाथ च फड़ाते सी। वह डंडे लैके शीशगंज अंदर आण बड़े, असीं डहे सा कीर्तन करन बाबे नहीं साडे, राम जपो जी ऐसे ऐसे हां जी, ए राम ही डहे सी जपण। उन्हां सिखां आण के कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड्डो ते खड्डे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप कीते रहे ते तुहानू इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवंदे साड़ देणा, धीआं तुहाडियां खिच के लै जाणगियां, आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जाणी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकदे ते कर लो। यह साडे सिंह साहब बहादुर महाराज नूं नमस्कार बख्शण। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापी दित्ती और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानू बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दित्ता सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने, प्यारे खालसा जी मेरी बेनती सुन लो, मेरी बेनती सुन लो, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी, इन्हों के अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी वो इन्हों के नाल हो गए और इन्होंने छाल मार के बबर शेर, जिमें बबर शेर के नजारे उथे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी में पढ़ना हुंदा, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकच्छ तुरंग सपच्छ बटो करतार कृपाण कम पावेंगे, निकसे जिम केवर पर्वत ते तसोर दिवाले पावेंगे, फल पाल पया संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया निकसे जिम केवर पर्वत ते, केवर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा हुंदा है वह जदों फिर पर्वत तो पंक मार के छाल मार के जदों मैदान च आउंदा है, उन्हें फिर जो है ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण हुआ, जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। तो अगे की है सिंह बुकते, सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर पर हुआ। ए बाबे में छाल मार गया शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली ते जकारे छड़ दे पज पे पज के वह 5-7 पिछे बचारे मेरे वर्गे वह भी मगन मगन भजे हो। जो उन्हें देखा गुस्टा तो ये ते आ गए, तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, वह 4,000 जो सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा, 10-15 दंद टुट गए, 5-7 गोडे टुट गए, है जी जो भज उठे नाले ए वेखण नाले भजन ते फिर एक उठे खलो गए। इन्हें आख्या गल सुनो, असी गुरु गोबिंद सिंह हां, ना असी बीबी नूं मारदे हां, ना असी बुढ़े नूं मारदे हां, ना असी बच्चे नूं मारदे हां, ना असी भजदे नूं मारदे हां, असी भजदे नूं नहीं मारदे। तुसी प्यो दे पुत्तो खड़ो जाओ, नहीं तो असी इधर जाने जिहड़े आ आउंदे ने उहनां नूं छड्ड के लाल किले वाल भज उठे, वह पहला ही अगे भज उठे है जी। 12,000 दुष्ट ऐ साडे बाबा जी ने, मैं तो कहना महाराज इन्हां नूं वधिया सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है, क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, 4वें दीवान लगा रज गए होवोगे, श्रवण करो गुरु गोबिंद।

हर नहीं असर नहीं किल बिख हर नहीं असर नहीं जय जय जग कारण श्रेष्ठ जय जय जग कारण।

ज्ञान अंतर्गत तेज पुंज तेहु लोग परगासी देखत दर्श पटिक ब्रह्म पजते दुख पर हर सुख सहज बिगासें सेवक सिख सदा आत्म

जिन सतगुरु सेव पदार्थ पायो निसबस हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पाओ माने तुम मलियागर

तू सतगुरु चौ जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरों तुर आद जुगाद।

કે એ વસ્તુ વસ્તુનું કોઈ લે નથી, એને બદલે તે ખાન એવું કોઈ દુઃખ નથી. મરદાનમાં કાહી ખીર ફિરદા રહ્યા और इस वस्तु के लैन वाला कोई ग्राहक नहीं. हर चीज चौरस के मरदाना खड़ा हो गया. सोच रहा है मार्क ने उठ के एडी वड्डी दात बख्शी, हर के लैन वाला ही सोच कौन लगेगा. इसमें मरदाने में सामने तक आए तो अरायण बैठी जिसकी टोकरी गाजर के मूल्य मरदाने ने सोचा चलो मैं इस अरायण में दे देंगे, कुछ खाण में दे देंगे, खा के अपने पेट में चुपका